सुवेला हुए जन्म सुवेला सब जाए मिलो सतगुर को मेरी जिंदड़ी है जो हर घर ना दृढ़ावेरा हर जग में आ खिन ढिल ना की गई मेरी जिंदड़ी है मत के जापे सहावे लग चौरासी प्रांतियां दुर्लभ जन्म

तिन लिया अंचला, तिन लिया अंचल लाए। गुरु प्यारी साध संग जी, बाणी दे कतन सार आप जी ने सुनिया, जैसे रहन प्रौण उठ चल से प्रभात, क्या तुरता गिरस्त स्यों सब फुलना की बागात। ये जीवन सफलता होना जे पंजा प्यारियां कोल जाके रहत समझ के नाम दृढ़ करा के संगत च बह के नाम जप के जीवन ता सफल होना। इसे प्रथाएं इस समागम विच अमृत संचार रात नू है। पंजा प्यारियां ने तुठना, पंजां प्यारियां दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान होके, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होके अपना बनाउणगे। जिन्हां जिन्हां ने गुरु साहब दा बनना है, गुरु साहब नूं अपना बनाउणा है, आप तैयार वर तैयार होके रात नूं रकाबगंज साहिब शाम नूं 4 बजे रकाबगंज साहिब जी तैयार वर तैयार होके पंजां ककारां दे धारनी बन के उत्थे पहुँच जाओ ते तरले पा के ये दात लै लो जी। रात नूं रैन सड़ाई हुई है रकाबगंज साहिब जी, आप जी सारे ने पहुँच के लाहे लैने जी।

सच्ची भक्त सच्चा हर मंदर प्रगटी साची सोए राम। हर मंदर एहो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मुगल न जाने मानस हर मंदर ना होए। हर मंदर हर जीव साजिया रखिया हुक्म सवार तो लिख लिखिया सो कमावना कोए न मेटन हार। शब्द चीन सुख पाया सच्चे नाए प्यार हर मंदर सबदे सोना कंचन कोटा पारा। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोर अंधार दूजा पाओ कर पूज दे मनमुख अंध गवारा। जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात ना जाए सच रते से उबरे दुखिए दूजे पाए। हर मंदर में नाम दान है ना बूझे मुगद गवार गुर प्रसादी चीनिया हर राखिया और तारा। गुर की बाणी गुर ते जाति जे शब्द रते रंग लाए पवित्र पावन से जन निर्मल हर कै नाम समाए। हर मंदर हर का हाट है रखिया शब्द सवार जिस तिस बिच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवारा। हर मंदर में मन लोट है मोया दूजे पाए पारस पीटिए कंचन पिया कीमत कही न जाए। हर मंदर में हर बसे सर्व निरंतर सोए नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जगरण करे उमे मैल उतार सदा जागे करे अपना राखे पंच तस्कर काढे मार। मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार्ग हर पाइये मन से कर्म कमाए राम। गुरमुख सहज तुने उपजे दुख उमे बिचों जाए हर नामा हर मन बसे सहजे हर गुण गाए। गुरमति मुख सोने हर रखिया उर तार एथे उथे सुख कणा जप हर हर उतरे पारा। होमे विच करना हो गए हर भगत न पवे थाए मनमुख दर टोई ना लहे पाए दूजे कर्म कमाए। त्रिग काणा त्रिग पहनना जिन दूजे पाए प्यार बिस्टा के कीड़े बिस्टा राते मन मर जमे होहे खुआरा। जिनको सतगुर भेटिया तिना बिटों बल जाओ तिनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ। पूरे पाग गुर पाइये पाए किते न पाया जाए सतगुर ते सहज उपजे होमे शब्द जलाए। हर सरनाई भज मन मेरे सब कुछ करने जोग नानक नाम ना बिसरे जो कुछ करे सो होगा। विवास प्रभाती महला पांचवां अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता पाई सुत बंता चुगे चुग आनंद से जुगता उर्ज परियो मन मीठ महारा गुण गाहक मेरे प्राण धारा। एक हमारा अंतर जामी तारे का मैं टेक एक सकी सिर साहा बड़ पुरख स्वामी राव। छल नागन से मेरी टूटन होए गुर कहा ए झूठी तोए मुख मीठी खाए को राए अमृत नाम मन रहा काए। लोभ मोह स्यों गई विकोट गुर कृपाल मोह कीनी छोट एठ गवारी बहुत कर गाले हम गुर राख लिए कृपाले। काम क्रोध स्यों ठाठ न बनिया गुरे प्रदेश मोह कानी सुनिया जय देख तै मां चंडाल राख लिए अपने गुर गपाल। दस नारी मैं करी दो अगन गुर कहा ए रसे बिखागन इन संबंधी रसालत जाए हम गुर राख लिए हम गुर राखे हर लिबलाए। अमेब स्यों मसलत छोडी गुर कहा ए मूर्ख होडी इहो निकार कर कही न पाए हम गुर राख लिए लिबलाए। इन लोगन स्यों हम पहे बिराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई। आए प्रभ पह अंचल लाग करो तपावस प्रभ सर्वागा। प्रभ हस बोले किए न्याय सगल दूत मेरी सेवा लाए। तू ठाकर हो ग्रह ग्रह सब तेरा को नानक गुर किया नवेरा। प्रभाते महला पंजवां मन में क्रोध महंकारा पूजा करे बस विस्तारा करे स्नान तन चक्र बनाए अंतर के मल कभे न जाए। इत संजम प्रभ किन ही न पाया भगौती मुद्रा मन मोह माया राम। पाप करहे पंचा के बसरे तीर्थ नाय कहे सब उतरे बहर कमावे होए निशंक जम प्रभाद करे कलंक। कुंगर वाज बचावे ताला अंतर
कपट फिरे बैताला बरमी मारी साप नामुआ प्रभ सब किसे प्रभ सब किस जाने जिंतु किया कुंवर ताप गेरी ते वस्त्रा आपदा का मारिया ग्रह ते नसदा देश छोड़ पर देसे ताया पंच चंडाल नाले लै आया कान फराए हराए टूका कर कर मांगे त्रिपतावन ते चूका बिनता छोड़ बद नदर पर नारी बेसन पाइये मह दुखियारी बोले नाई होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाइये जोनी अंते रहता दुख दे ही सहता हुक्म न बुझे व्यापे ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल भेद समृत मनमुख कर्म करे जाए ज्यो बालू कर ठौर न ठाए जिसनू पहे गोविंद दे आला गुर का बचन तिन बाध्यो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन के संग तराया जे होवे पाग ता दर्शन पाइये आप तरे सब कटंब तराइये राहो दूजा प्रभाती महला पंजवां सिमरत नाम के लिख सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मिल हरस पाया पार ब्रह्म रिद महे समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया राम चुका गौन मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त द्वार हर प्रेम भगत मन तन सद राता प्रभु जनाया तब ही जाता कट कट अंतर व्या सोए तिस बिन बीजो नाही कोए बैर विरोध छेदे पै भरमा पुन प्रभ पुन आत्मे कीने धर्मा मां तरंग ते काढे लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संजम नाम संभालिया अपने ठाकर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण तिताई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सुप्रसन्न पहे गोपाल जन्म जन्म के मिटे बताल हूं जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करीजा चरण कमल निम खरीदे तारे गोविंद जपत सब कार्य सारे उचे ते उचा प्रवथान हर जन लावे सहज ध्यान दास दासन की वाछो तूर सर्व कला प्रीतम पर पूरा मात पिता हर प्रीतम नेरा मीत साजन पर वासा तेरा कर गह लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विवास प्रभाती बाणी भगत कबीर जी के इकार सतगुर प्रसाद मरण जीवन की शंका नासे अपन रंग सहज परगासे प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा रहाओ जय नंद दुख दूर पियाना मन मान कलिव तातल काना जो कुछ हुआ सो तेरा पाना जो इब बुझे सो सहज समाना कहत कबीर किलविख गए खीना मन पिया जग जीवन लीना प्रभाते अलो एक मसीत बस्त है अबर मुल्क किस केरा हिंदू मूर्त नाम निवासे दोह में तात नाहेरा अल्ले राम जीवो तेर नाए तू कर मेहरा मत साई राम दखन देश हरि का वासा पश्चिम अले मकामा दिल में खोज दिले दिल खोजो यही ठौर मकामा ब्राह्मण ग्यास करे चौबीसा काजी काजी में रमजाना ग्यारे मास पास के राके के माहे निदाना कहाँ उड़ीसे मंजन किया क्या मसीत से नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या जकाबे जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंग राम राम अल्लाह का सब गुर पीरा मारे कहत कबीर सुनो नर नर बे परो एक के सरना केवल नाम जपोरे प्राणी तब ही नीचे तरना परवाते अबल अल्ले नूरे पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन कल पले को मंदे लोगां परमन भूलो पाई खालक खलक खलक मैं खालक पूरे हो सब ठाई राम माटी एक अनेक पांत कर साजी साजन हारे ना कुछ पोच माटी के भांडे ना कुछ पोच कपारे जे समे सच्चा एको सोए तिसका किया सब कुछ होए हुक्म पछाने सोए को जाने बंदा कहिए सोए अलो अलकन जाई लिखिया गुर गुड़ दीना मीठा कहे कबीर मेरी शंका नासे सर्व निरंजन डीठा प्रभाते
वेद कदेव कहां को मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, जो सब में एक खुदाए कहते हैं तो के मुर्गे मारे। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई, तेरे मन का परम न जाई राम। पकड़ जो आन्या दे बिनासे, माटी को बिस्मल किया, ज्योत स्वरूप अनहत बालागे, कहो लाल क्या किया। क्या उजो पाक क्या मुँह तोया, क्या मसीत से लाया, दो जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज काबे जाया। तून पाक पाक नहीं सूझया, तिसका मर्म न जानिया, कहे कबीर पिस्त ते चूका, दो जिक से मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव दिवाकर, अद पत अद समाई, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। इलियो आरती ओ पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाई, ठंडा ब्रह्मा निगम बिचारे, अलकन लख्या जाई राम। तत तेल नाम किया भाती, दीपक दियो जियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे भूजन हारा। पांचे शब्द अनहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। प्रभाती वाणी भगत नामदेव जी की, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की बिरथा मन ही जाने, के बुझल आगे कहिए, अंतर जामी राम रवाई, मैं डर कैसे चाहिए। बेद लिए गोपाल गुसाई, मेरा प्रभ रबिया सर्वे ठाई राम। माने हट माने पाठ, माने है पसारी, माने बस नाना पेदे, परमत है संसारी। गुर के शब्द हो मन राता, दुबदा सहज समाणी, सब हुक्म हुक्म है आपते, निरपो समत विचारे। जो जन जान पजे पर गोतम, ताची अवगत बाणी, नामा कहे जग जीवन पाया, हृदय अलख बड़ाणी। प्रभाते आद जुगाद जुगाद जुगो जुग, ताका अंत न जानिया, सर्व निरंतर नाम रिया, रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजे शब्द बाजे।

रक्त चरण में नवांत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग स्तंभ ने गोविंद नामग न सिमरांत ज्ञानी जानांत असरंग दुर्लभ देव द्रंत जात सार नानक हर हर हर हर हर हरे जपांता सपांत तवांग चोत घणंग पूर्णंग भरलो कृपाला गंभीरंग उच्चे सर्वंग पारा प्रीत्या प्रियंग विश्राम चरणंग अनाथ नाथे नानक सरणंग मिर्गी पैखांत बद कपरने लखे आवदे अहो जसे रखेण गपाले नानक रोम ना छेदते बा जतन करता बिलवंत कारी सैवंत सूरा चतर दिसे बिकम तान बसंत उच्चे न सिमरंत मरनंग कदांचे हवंत आग्या भगवान पुरखे नानक कीती सास खरखते सबदंग रतंग हितंग मिया कीर्तन करी कर्म करितुआ मैटांत तदरागत परम मवंग भगवान रमंग सर्वत्र तहनंग दृष्ट दवांग मोग दर्शनंग बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रियंग जाप जपना कटांत रूपंग टांत दीपंग कटांत रब ससियर नखत्र गगनंग कटांत वसुधा बसदा गिर तार सिखंडंग कटांत लड़ना सुत प्रांत हितंग कटांत अनक मानक माया सुपरूपंग न कटांत केवल गोपाल चोता आस्तरंग नानक साध जन न बिलंब तरमंग बिलंब पापंग दृढ़ांत नामक तंत लोभंग सरन सतहंग किल विघनासंग प्राप्तंग धर्म लखणे नानक जय सो प्रसन्न माधवै मृत मांग अल्प विध्यांग रचांत बंता विनोद सहंग यौवन बेहकर्म कनक कुंडले विचित्र मंदर सबंत वस्त्रा इतिहांत माया व्याप्तंग हे चोत सरन संत नानक पोह भगवान वै नमै जन्मता मरनंग हरकता सोगंग पोगंगता रोगंग उचंगता नीचंग नाना सो मोचंगा राजंगता मानंग बिमानकता हीनंग परवेरत मार्गंग वरतांत विनाशनंग गोविंद भजन साध संगेन अस्तर नानक भगवंत भजन आसनंग कृपांत हरियंग मत तत् ग्यानंग बिस बिकसीधे बुधा कुशल सानंग विषयांत रखेंग त्याग मानंग शीतलांत हृदयंग दृढ़ संत ज्ञानंग रहांत जन्मग हर दर्स लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहांत बेदा गुणांत गुनिया सुनांत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला नाम दान जा चंत नानक दीन हर गुर गपाला ना चिंता मात पित प्रात ना चिंता कछ लोक है ना चिंता बंता सुतमीत है प्रवित नानक संबंध ने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जिया प्रतिपाल के नितय विदंग नितय चंग नितय आसा बाप वेद प्रकारंग नितय तंग अंग बदंग परम माया मलंग बिकारंग फैरांत जोन अनेक जठरागन न सिमरंत मलीन बुध्यांग हे गोविंद करत मिया नानक पतत धारण साध संगवै गैरांत गिर पतत पतालंग जलांत दीदी पह विश्वास्तर बहांत गा तुहंग तरंग दुखांत ग्रह चिंता जन्मता मरने अनक साधनंग ना सिद्धते नानक स्तंभंग स्तंभंग संभंग शब्द साध सबजने घोर दख्यंग अनक अनक त्यंग जन्म दराद्रंग महा बिख्यादंग मिटांत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्म करोता अंधकार सिमरंत प्रकाशंग गुण रमंत अग खंडने रिद बसंत पह पीत दूते कर्म करत महा निर्मल जन्म मरण रहंत सरूता सुख समूह मोघ दर्शन सरन जोगंग संत प्रै नानक सो भगवान खैमंग करोता पाशंग क्रोत अग्रणी बे निरासंग आस पूर्ण निर्दन पियंग तनवंत रोगियंग रोग खंडने भगतंग भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तने पार ब्रह्म पुरख दतारे नानक गुर सेवा किन लभते अधरंग तरंग तारने निर्दंग तन नाम नर हरे ननाथ नाथ गोविंदे बलहीन बल के स्वयं सर्वभूत दयाल चुत दीन बद विदमोदर सर्वगे पूर्ण पुरख भगवाने भगत बछल करना मैं कट कट बसंत बस देवे पार ब्रह्म परमेश

0: जाचंत नान कृपाल प्रसादंग नै बिसरंत नै बिसरंत नारायण नै समरतंग ना सेवकंग नै प्रीत परम परखोतमंग तब प्रसाद सिमरते नामग नानक कृपाल हर हर गुरंग ਪਰਨ ਪੋਖਣ ਕਰੰਤ ਜੀਆ ਵਿਸਰਾਮ ਸਾਧਨ ਦੇਵੰਤ ਦਾਨਗ ਸਿਰਜੰਤ ਦਰਤਨ ਜਨਮ ਚਤਰ ਚੇਤਨੈ ਬਰਤੰਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਨਿਤੇ ਰਚਨਾ ਨਿਰਮੋਹਤੇ ਦਾਨੰਗ ਪਰਾ ਪਰਵੇਣ ਭੁਜੰਤੇ ਮਹਾਪੀਪਤੇ ਮਹੀਪਤੈ ਵਪ੍ਰੀਤ ਬਧਿਅੰਗ ਮਾਰਤ ਲੋਕੇ ਨਾਨਕ ਚਰੰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੈ ਬਿਰਤਾ ਨਿਰੰਗ ਅਨ ਗ੍ਰਹੰਗ ਗੋਵਿੰਦੇ ਜਸੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦੰਤਰੇ ਅਰੋਹੰਗ ਮਹਾਰੋਗੰਗ ਵਿਸਮ੍ਰਤੇ ਕਰਨਾਮੈ ਰਮਣ ਕੇਵਲੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਧਰਮੰਗ ਦੇ ਤਾਹਰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਪੀਰਤੰਗ ਸੰਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸਹਿਲ ਸੀਲ ਸਤੰਗ ਸਮ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਦੁਰਜਨੈ ਨਾਨਕ ਭੋਜ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਆਵਤ ਹੋਏ ਉਪ ਤਿਸ਼ਟਤੈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨੈ ਭਵੰਤ ਨੈ ਭਵੰਤ ਮਾਨ ਭੰਗਨੈ ਸੁਭਾਹੀਨ ਨੈ ਭਵੰਤ ਨੈ ਭਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖ ਨੈ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਜਪੰਤ ਮਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਖ ਬਾਸਨੇ ਸਹਿਨਾ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਸੂਰ ਅਜਿਤੰਗ ਸਨਹੰਗ ਤਨ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਓਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚਰਮਨੇ ਅਰੂੜ ਤੇ ਅਸਬ ਰਥ ਨਾਗੇ ਭਜੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗੈ ਗੇ ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਵੇਰ ਪਿਹੰਗ ਸੱਤਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਅੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੇ ਜਿਤੇ ਵਿਸਵ ਸੰਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਵਿਸਿਆੰਗ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਚ ਤਸ ਕਰੈ ਮਿਰਗ ਤਿਸਨਾ ਗੰਧਰਭ ਨਗਰੰਗ ਧਰਮ ਛਾਇਆ ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੈ ਤਰਤੇ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਮਿਥਿਆ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਮੈ ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਦਾਨ ਨਿਗਮੰਗ ਨਚ ਗੁਣ ਗੈ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨੇ ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕਟੰਗ ਨੈ ਚੰਚਲ ਚਾਤਰ ਚਾਤਰੈ ਤ੍ਰੇ ਭਾਗ ਉਦਮ ਲਿਬਦੰਗ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਲ ਪੰਡਤੇ ਕੰਠ ਰਮਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਹਸਤ ਊਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਭਣ ਜੋ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਉਦਰਨ ਨੈ ਨੰਦਨੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿੰਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪਰਸ ਪਰਸਟਣੈ ਕੁਕਰੇ ਸੁਕਰੈ ਗਰਤੱਬੇ ਕਾਕੇ ਸਰਪਣੇ ਤੁਲ ਖਲੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਭਜਨੰਗ ਹਰਿਦਿਅੰਗ ਨਾਮ ਧਾਰਨੇ ਕੀਰਤਨੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਨ ਨਾਨਕ ਨੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਮ ਦੂਤਨੈ ਨਚ ਦਲਬੰਗ ਧਨੰਗ ਰੂਪੰਗ ਨਚ ਦਲਬੰਗ ਸਬਰੰਗ ਰਾਜਨੈ ਨਚ ਦਲਬੰਗ ਭੋਜਨੰਗ ਬਿਜਨੰਗ ਨਚ ਦਲਬੰਗ ਸਵ ਅਛਵੰਬਰੇ ਨਚ ਦਲਬੰਗ ਸੁਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾਤ ਬਾਧਵ ਨਚ ਦਲਬੰਗ ਬਿੰਤਾ ਬਿਲਾਸੈ ਨਚ ਦਲਬੰਗ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਵੀਣੰਗ ਨਚ ਦਲਬੰਗ ਚਤਰ ਚਾਂਚਲੈ ਦਲਬੰਗ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੇ ਨਾਨਕ ਲਬਧੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਵੰਗ ਜਤ ਕਤੇ ਤਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਗ ਸਰਵਰਗ ਮਰਤ ਪਿਆ ਲੋਕੇ ਸਵਰਤ ਸਰਵਤਰ ਰਮਣੰਗ ਗੋਬਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਦੇ ਪਤੈ ਵਿਖਿਆ ਭਿਅੰਤ ਅਮ੍ਰਿਤੰਗ ਦੁਸ਼ਟਾ ਸਖਾ ਸਭਜਨੇ ਦੁਖੰਗ ਭਿਅੰਤ ਸੁਖੰਗ ਪਹਿ ਪੀਤੰਗ ਤੈ ਨਿਰਭਵੈ ਥਾਨ ਬਿਹੂਣ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਮੰਗ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੇ ਸਰਬ ਸੀਲ ਮਮੰਗ ਸੀਲੰਗ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਾਮ ਪਾਵਨੈ ਸਰਬ ਕਰਤਵ ਮਮੰਗ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਵ ਨਾ ਦੇ ਪਾਤੈ ਨੈ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ ਨਾ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੈ ਨੈ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤਰ ਤੇਨ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸੁਭਜਨੈ ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰਗ ਦਿਆਨੰਗ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੇ ਗਿਆਨੰਗ ਸਮ ਦੁਖ ਸਕੰਗ ਭਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੈਰਨੈ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੁਖ ਵਿਵਰਚਤੈ ਭੋਜਨੰਗ ਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰਗ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ ਉਪਦੇਸੰਗ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੈ ਸਰੋਤ ਸਰਵੰਗ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣਕੈ ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰਗ ਪੁਰਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ ਅਜਾ ਭੁਗੰਤ ਕੰਦ ਅਮੂਲੰਗ ਬੇਸੰਤੇ ਸਮੀਪ ਕਹਿਰੈ ਤਤਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਕੰਗ ਵਿਆਪਤੇ ਸ਼ਲੰਗ ਛਿਦਰੰਗ ਕੋਟ ਵਿਘਨੰਗ ਅਪਰਾਧੰਗ ਕਿਲ ਵਿਖਮਲੰਗ ਪਰਮ ਮੋਹੰਗ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਗ ਮਦੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤੰਗ ਮਿੱਤਰ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਨਰਕੈ ਅਨਕ ਪਾਵਨ ਨਾ ਸਿੱਧ ਤੇ ਨਿਰਮੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਲ ਨਾਮੰਗਾ ਰਮਾਨਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹੈ ਤਰਨ ਸਰਨ ਸੁਮਾਮੀ ਰਮਨ ਸੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥੇ ਦਾਨ ਦੇਤ ਪ੍ਰਭੂਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ ਆਸ ਕਰਨ ਸਗਲ ਅਰਥ ਅਲੈ ਲੈ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾ ਜੰਤ ਜਾਚਕੈ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਖਮੰਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨੈ ਦੁਰਵਚਨ ਭੇਦ ਪਰਮੰਗ ਸਾਕਤ ਪਿਸਨੰਗ ਤਾਂ ਸਵਜ ਸੁਰਜਨੈ ਅਸਤ੍ਰ ਅਸਥੰਗ ਸੋ ਗਰਕੰਗ ਪੈ ਹਿੰਗ ਤੈ ਨਿਰਭਵੈ ਦੇ ਪੈ ਅਟਵੀ ਮਹਾਨਗਰ ਵਾਸੰਗ ਧਰਮ ਲਖਣੇ ਪ੍ਰਭਮਿਆ ਸਾਹ ਸੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਮੰਗ ਸਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਚਰਨੰਗਾ ਜਾ ਹੇ ਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰਗ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨੇ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਬੇਮੋਣੇ ਹਰ ਕਰਨ ਹਰ ਨਮਸਕਾਰੰਗ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੈ ਹੇ ਕਾਮਗ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰਗ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣੇ ਚਿਤ ਹਰਨੰਗ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮੰਗ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਵਿਧਾਰਨੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬਿਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੈ ਭਵ ਪੈ ਬਿਮੁਚਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਰਾਇਣੈ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣ ਸਮਾਵਣ ਤਬ ਪੈ ਬਿਮੁਚਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਰਾਇਣੈ ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕਰੋਦੰਗ ਕਦੰਚ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਪਰ ਜਤੇ ਬਿਖੰਤ ਜੀਵੰਗ ਬਸਿਹੰਗ ਕਰੋਤ ਨਿਰਤੰਗ ਕਰੋਤ ਜਤਾ ਮਰਕਟੈ ਅਨਕ ਸਾਜਨ ਤਾੜੰਤ ਜਮਦੂਤੇ ਭਵ ਸੰਗੇ ਅਧਰਮ ਅਧਮੰਗ ਨਰੈ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਤ ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਹਰੇ ਅਨਕ ਲਹਿਲੀ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲਤੇ ਧਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ ਅਨਕ ਪਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲਤੇ ਨਚ ਮਿਤ੍ਰੰਗ ਨਚ ਇਸਤੰਗ ਨਚ ਬਾਦਬ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਬ ਲੱਜਿਆ ਅਕਰਨੰਗ ਕਰੋਤ ਖਿਆਦੇ ਅਕਾਦੰਗ ਅਸਾਜੰਗ ਸਾਜ ਸਮਜਿਆ ਤ੍ਰੈ ਤ੍ਰੈ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਵਿਖਿਆਪਤ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਨਰ ਰੇ ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰਗ ਅਹੰਕਾਰੰਗ ਪਪਾਤਮਾ ਮਿਤ੍ਰੰਗ ਤਜੰਤ ਸਤਿਅੰਗ ਦੜੰਤ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਵਿਸਤੀਰਨੈ ਅਵੰਤ ਜਵੰਤ ਥਕੰਤ ਜੀਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਬਹੁ ਭੋਗਨੈ ਭਰਮ ਭਿਆਨ ਧਿਆਨ ਰਮਣੰਗ ਮਹਾਂ ਵਿਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਨੈ ਵੈਦਹੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਧ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੋ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਨੈ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਰੋ ਹੇ ਸਰਨ ਯੋਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਿਆ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਸਬਸਤ ਕੇਨ ਸਮੈ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਮਾਧਵੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨੰਗ ਰਮਨਗ ਕਪਾਲ ਕੀਰਤਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗੇਨ ਤਰਨੰਗ ਨਾਨਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪੈ ਦੂਤਰੈ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਭੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰਗ ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਧਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੈ ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲੇ ਪੈ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨੈ ਨੈ ਭਗਤ ਬਚਲ ਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸਰ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਚੁਤੈ ਜੇਨ ਕਲਾ ਤਾਰਿਓ ਕਾਸੰਗ ਬੇਸੰਤਰੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਬੇਸ਼ਟੰਗ ਜੇਨ ਕਲਾ ਸਸ ਸੂਰ ਨਖਤਰ ਜਤਹੰਗ ਸਾਸੰਗ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨੰਗਾ ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲੰਗ ਨੈ ਛੈ ਜੰਤ ਜਠਰ ਰੋਗਨੈ ਤੇਨ ਕਲਾ ਸਤੰਭਗ ਸਰੋਵਰੰਗ ਨਾਨਕ ਨੈ ਛੈ ਜੰਤ ਤਰੰਗ ਤੋਣੈ ਗੁਸਾਈ ਗ੍ਰਿਸਟਰ ਪੇਨ ਸਿਮਰੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਵਨੈ ਲਿਬਧਿਅੰਗ ਸੰਤ ਸੰਘੇਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਭ ਮਾਰਗ ਹਰ ਭਗਤਣੈ ਮਸਕੰਗ ਪਗਣੰਤ ਸੈਲੰਗ ਕਰਦਮ ਤੁਰੰਤ ਪਪੀਲ ਕੈ ਸਾਗਰੰਗ ਲਿਖੰਤ ਪੇਗੰਗ ਪੈ ਗੰਗ ਮਤ ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਧ ਕੈ ਸਾਧ ਸੰਘੇਨ ਸਮਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਤਿਲਕ ਹੀਣਗ ਜਤਾ ਬਿਪਰਾ ਅਮਰ ਹੀਣਗ ਜਤਾ ਜਤਾ ਰਾਜਨੇ ਅਵਦ ਹੀਣਗ ਜਤਾ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਹੀਣਗ ਤਤਾ ਵੈਸਨ ਵੈ ਨਾ ਸੰਕੰਗ ਨਾ ਚਕਰੰਗ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰਗ ਸਚਰਜ ਰੂਪੰਗ ਰਾਂਤ ਜਨਮੰਗ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਾ ਤੰਤ ਬੇਦਾ ਊਚ ਮੋਚ ਅਪਾਰਗ ਬਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਰਿਧਿਅੰਗ ਚੋਤ ਬਿਜੰਤ ਨਾਨਕ ਬੜ ਭਾਗਿਆ ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰਗ ਸੰਸਾਰੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਕਰੇ ਬਿਕਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਿਧਰੰਗ ਮਹਾਂ ਸਾਧ ਪੰਚ ਤਸ ਕਰੇ ஹீத்மோ பே பரமம் பரமங்க அஹங்க பாசதி கண கட்டணே பாவகத்தோ சாது குரங்க அகம தீர நலங்கனே பஜ சாத சங்க பால நானக ஹர் சரண சரண தரண கிருபா கிருபா கிராந்த கோவிந்த கபாலே சகலங்க ரோக கண்டனே சாத சங்கேன குண ரமத நானக சாரண பூரண பரமேஸ்வரே சயாலமங்க முதர மனுக்கியங்க ஹிருதயங்க பூம்பேர்னே நவாந்த வாந்த மித்யா சேத்தனங்க சாந்த சபஜனே அச்சேத் மூடா நா ஜனந்த கட்டாந்த சாத்சா நேத் பரதே சஜாந்த மகாசுந்தரீ காயா கால கன்யா கிரஸ்தேர்ச்சாந்த புருக்கே குட்டாம்பலீலா நித் ஆசா பிக்யா வினோதா பரமத பரமத் பௌஜான மஹாரியோ சர் நானக கர்ணாமே ஹே ஜிவே ஹே ஜிஹ்வே ஹே ரசகே முதிர பிரேத் வங்க சத் தங்க பரம பாதங்க அவர்த்த இத்தே சோதாசரணே கோவிந்த தமோதர மாதவே கர்வந்த நாரி மாதோ நமந்தங்க பலவாந்த பலாத்காரன சரண கமல நய புஜாந்த திரண் சமான் திரிக ஜன்மன ஹே பபீலகா கிரேஸ்தே கோவிந்த ஸ்மரன் துவங்க தன்னே நானக அனக பார் நமோ நம திருநங்க தா மேரங்க சகங்க தா ஹரியங்க பூடந்தா தரியங்க உன்தா பரியங்க அந்தகார கோட் சூரஜ ரங்க பிரமாந்த நானக ஹர குரு தயாரங்க பிரம்மண சங்கு திரங்க பிரம்ம கர்மனே ஜெய சுபூர்ண ஆத்தம் ஆத்தம் தங்க சம்சார கங்க தய நர நானக நிர்பல பரதார் பிரணங்க பாபிகன் கர்ணங்க உச்சரணங்க சர்வஜீ க லாலி திருஷ்ணா ஆத் பாத்த மன் மாய கர்ம கர்த்த சே சுக்கர மதே சமீப சரணங்க உதரணங்க பஹதூத்ரே அநேக பத்க அர்ணங்க நானக சாத சங்கம் நசை மஹல்லா பஞ்சவா காத்தா இக் ஓங்கார் சத்குர் பிரசாத கர்பூர பஹப சகந்தா பரச மனுக்கே தயங்க மலிஹினங்க மஜ்ஜா ருத்ர துர்கந்தா நானக அத்த கர்வேண கணானோ பரமாணோ பிரஜாந்த காசே தீபலோ சே கண்டனே கஷேன நயன பரேன நானக அபினா சாது நாசே தத்தே ஜானோ சந்த வந்தோ மரணோ திருஷ்டேன மித்யா தீர்த்த சாத சலந்தோ பணாந்த நானக சாத சங்கேன மாயா சித் பரமேன இஷ்ட மத்ரீக வாத பே லப்தாங்க சாத சங்கேன நானக சுக அஸ்தனங்க கபால பஜனங்க மேலாகர் சகேன நிம் விர்க சே சந்தனே நிக்ட வசந்தோ வாசோ நானக ஹங்க புத்த நா பௌத்தே காதா குப்ப கபால கதங்க மதங்க மான் மர்தனே அத்தங்க பஞ்ச சுதிரேன நானக ஹர் பாணே பரஹாரனே பச்சன சாது சுக பந்தா லஹந்தா பட கர்மனே ரந்தா ஜன்ம மரேன மரமங்க நானக ஹர கீர்த்தனே பத்தர் பரஜேன ஜடியங்க நா சடியங்க பே பேட சம்பதா நாம் பியூன் பிமெக்த பேக்மத்தா நானக பாந்த ஜோன் வாசரோ ரேணி பாவனி சாத சங்கேன லபதங்க பட் பாகனே ஹர் நாம் குண்டமன்க நானக சம்சார சாகர் ந வியாபனே காதா கூட பாரங்க சம்ஜனங்க பிர்லா ஜன்னே சம்சார காம தஜனங்க கவ நானக கபார் ரமணங்க சாத சங்கமே சமந்தர் சாத பச்சனா கோட் தோக பினாசனே ஹர் சரண கமல தியானங்க நானக கோல சமூத ஹர்னே சுந்தர் மந்தர் சேனே ஜேன் மதே ஹர கீர்த்தனே முக்தே ரமண கவிந்தே நானக லபதாங்க லபதாங்க பட் பாகனே ஹர் லப்தோ மித்திர சமித்தோ விதாரண கதே நா சித்தோ ஜாங்கா அஸ்தல தோல அமித்தோ சோயி நானக சகா ஜி சங்க கித்தோ அப்ப ஜசங்க மெட்டாந்த சத் பூத்தரே சிமிருத்தபே ரிதே குருமந்திரனே பிரீத்தம் பகவான் அச்சோத்தான் நானக சம்சார சாகர் தாரனே மரணங்க விசரணங்க கோவிந்தே ஜீவனங்க ஹர் நாம தே ஆவணே லபணங்க சாது சங்கேன நானக ஹர் பூர்வ லேக்கணே தசன் வியூன் பியங்கங்க மந்திர கௌடி நிவாரணங் வியாத பாடுங்க சத்தங்க நானக லப லபத கர்ம கர்மணே ஜத் காத்திரமங்க சரணங்க சர்வத்தர் ஜீவனே தத் லக்னங்க பிரேம நானக பிரசாதங்க குருதாசனே சரணார் பிந்த மன் பத்யங்க சித்தியங்க சர்வ குசலனே காதா கவந்த நானக பபங்க பராபூர்வனே சுபோச்சன் ரமங்க கவனங்க சாசங்கேன உதரனே संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म ना लभते है वेद पुराण शास्त्र विचारंग एक ओंकार नानक नाम और तारंग है कले समूह सगल उदारंग बटभागी नानक को तारंग सिमरंग गोविंद नामंग उदरण गुर कुल समूहण लभद्यंग साध संगे नानक बटभागी पैठंत दर्शने सर्व दुख प्रत्यागी सर्व धर्म देड़तने न लभ देन साध संगेन नानक मस्तक लिखण हो है हवंतो हरन भरन सपूरने साधु सप्तम जानो नानक प्रीत करनंग सुखेन बैन रतनंग रचनंग कुसंभ करंगणे रोग सोग व्यंगंग नानक सुख ना सुपने पुनः महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम अगम मस्तक लेखावते उर्जरियो सब संग अनूप रूपावते उस्तत कह न जाए मुखो तुहारियां मोई देख दर्श नानक बलियारियां संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जी सब दिवा आस प्यासी सेज सोकंत बिछाइए हर मस्तक हो वै भाग ता साजन पाइये सखी काजल हर तंबूल सवेक सब साजया सुले किए सिंगार के अंचन पाजया जे कर आवै कंत ता सब कुछ पाइये हर कंते बाज सिंगार सब इथा जाइये जिस घर वसया कंत सा बडभागणे तिस बनिया हंब सिंगार साई सुहागणे हूं सुती होए चिंत मन आस पर आईया हर हां जा कर आया कंत ता सब किछ पाइया आसा इती आस के आस पर आईऐ सतगुर पहे दयाल ता पूरा पाइऐ यह मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पहे दयाल ता मन ठहराया कौ नानक बेअंत बेअंत ते आया दुतरे संसार सतगुरु तराया मिटिया आवा गौण जा पूरा पाया हर हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतान पेख दुख नासना बासो संग गपाल सगल सुख रास हर हर रिद सिद्ध नव निद बसे जिस सदा कारा परत रावण जाहे से ता लाजिए नित प्रतिहरे पर धर्व छिदर कत ढाकिय हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारे हर हां सुनते पहे पनीत पारवम बिचारे ऊपर बने आकाश तले तर सोती दै दिस चमके भिजल मुख को जोते खोजत फिरो उपदेश पियो कत पाइये हर हां जे मस्तक होवै भाग ता दर्श समाइये डिठे सवे थाव नहीं तुद जेया बद्धो पुरख विदाते ता तू सोया बस्ती सगन पार अनूप रामदास पर हर नानक कसमल जाए नाइये रामदास सारा चातरक जेत सुचेत सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसे को आइये बन बन फिर तो दास बूंद जल कारने हर त्यों जन त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलियार ने मित का चेत अनूप मरम ना जानिए गाहक गुणे अपार सोता तपछानिए चिते चित चित है चित समाए ता होवे रंग कणा हर चंचल चोरे मारता पाव है सच तना सुपने उबी पही पही गेहो की ना चला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बन चला खोजो ताके चरण कहो कत पाइये हर हां सोई चतान बताए सके प्र पाइये नैन देखे साध से नैन बयालिया करन ना सुने नाद करन मुंद कर लिया रसना जपे नाम तेल तेल कर कटिए हर हां जब बिसरे गोविंद राय दिनों दिन कटिए पंकज बाते पंक महामद गुपिया अंग संगुर जाए बिसरे सुपिया है को ऐसा मीत जे तोरे बिकम गाठ नानक एक सिरी तार नाथ जे टूटे ले साठ ताबो दसा नेक प्रेम प्रभ कारने पंच सतावे दूत कवन बेद मारने तीखण बाण चलाए नाम प्रभ ते आइये हर मां बिखादी घात पूरन गुर पाइये ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਦਾਤ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਉਟੈ ਖਾਬੋ ਪਹੁੰਚੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਾਧ ਕਦੇ ਨ ਜਾਏ ਮਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਾ ਜੀ ਕਰਨ ਜੈਕਾਰ ਨਿੰਦਕ ਪੂਏ ਮੂਏ ਮਪਾਚ ਸਾਜਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਵਨ ਪਾਤਤ ਪਨੀਤ ਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਏ ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਖੁਆਰ ਕਹਾਂ ਲੱਗ ਖੇਵੀਐ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਏ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਹੂੰ ਬਲਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਜੈ ਦਰ ਗਹਿ ਜਾਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਗਵਾਰ ਵਿਕਾਰ ਕੰਨ ਮਹਾਂ ਦਿਗੰਧਤ ਬਾਸ ਸਟਕਾ ਚਾਰ ਤਨ ਫਿਰ ਤੋ ਗਰਭ ਗਵਾਰ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹਰ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸਚ ਮਾਨੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੇ ਔਦ ਤਿਸੇ ਕੌਣ ਰਾਖੇ ਵੈਦ ਕਨਕ ਭਾਵ ਕਹਾਂ ਲੋ ਪਾਖੇ ਏਕੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਆਵੈ ਹਰ ਬਿਨ ਆਵੈ ਤਨ ਛਾਰ ਵਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਵੈ ਔਖਦ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਮੁਲਕ ਪੀਜੈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਾਵੈ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕੋ ਦੀਜੈ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਿਸੇ ਹੀ ਪਾਵਣੈ ਹਰ ਹੂੰ ਬਲਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਵਣੈ ਵੈਦਾਂ ਸੰਦਾਂ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਜੋ ਜੋ ਨਾ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਹਰ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ ਚੌ ਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੈ ਜਿਨ ਸਰ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਖਚ ਗਿਰਿਆ ਬੀਚ ਨਰਾਈ ਹੋਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਬੂਜਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਧਿਆਨ ਬੰਨ ਨਵਖੰਡ ਵਸਦਾ ਭਰਮ ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਮ ਕੈ ਗੁਣ ਹੋਏ ਕਰ ਕਰਮ ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ ਬੀਧੇ ਬਾਧੇ ਕਮਲ ਮੈਂ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮੈ ਤੇ ਹਰ ਗਰਭ ਮੂਸਨ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਓ ਸਰਬ ਮੂਸਨ ਮਰਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮਰਤ ਹਿਰਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮ ਨ ਬੀਧਿਓ ਜਿਉ ਮਿਤ ਬਿਆਰ ਗਬ ਦਬ ਜਬ ਜਾਰੀਏ ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਆਲ ਮੂਸਨ ਤਬ ਹੀ ਮੂਸੀਏ ਬਿਸਰਤ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਜਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਚਰਨ ਚਿਤਬਤ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਨਨ ਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਲੱਖ ਘਾਟੀ ਉੱਚੋ ਕਣੋ ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਬਿਆਲ ਨੀਚ ਕੀਚ ਨਿਮਿਰਤ ਕਣੀ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ ਕਮਲ ਨੈਨ ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਚਿਤ ਚਾਰ ਮੂਸਨ ਮਗਨ ਮਰਮ ਸਿਉ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਹਾਰ ਮਗਨ ਪਿਓ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਸੂਦਨ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਓ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਅਦਮ ਪਤੰਗ ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੈ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੈ ਕਹਾਂ ਲੜਾਵੇ ਜੀਓ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ ਉਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ ਦਿਸੇ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਜਿਉ ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀਂ ਚਾ ਨਾਓ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜਤ ਵੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹੂ ਮੁਆ ਪਾਛੇ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪਰਵ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਜੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਪਲੋ ਸਭ ਕੋਏ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਸ ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨਕੇ ਨੋ ਆਦੇਸ कबीर सोई मारिए जे मुए सुख होए पलो पलो सब को कहे बुरा न माने कोए कबीर राती होवे कारियां कारे उबे जनता लै फाए उठ धावते जैसे मा जान मारे भगवंता
1: कबीर उपलास की चंदन हुई रहे बसे जो चंदन पास वीर बांस बढ़ाई बूढ़िया यो मत डूबो कोई चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध न होए कबीर दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ने चली साथ आए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ वीर जह जह हो फिरियो कौतुक उठा उठाई एक राम से नहीं बहरा पूजर मेरे पाए वीर संतन की झूंगियां भली पटुक सती गाओ आग लगो तै तौल हर जे नाही हर को नाओ वीर संत मुए क्या रूई है जो अपने ग्रह जाए रूबो साकत बपरे जो हाट है हाट बकाए वीर साकत ऐसा है जैसी लसन की खान कोने बैठे खाइए प्रगट हुई निदान वीर माया डोलनी पवन चुकोलन हार संतो माखन खाया छाछ पिया संसार वीर माया डोलनी पवन बह अवतार जन बलोया तिन खाया अबर बलो बनहार वीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट एक कबीरा नाम सै जन कीनी बारे बाट कबीर सुख नहीं जोग वी सुख नहीं जोग करे जो बहुते मीत जो चित राखे सो ते सुख पावे नीत कबीर जिस मरने ते जग रह मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद राम पदार्थ पाई कै कबीरा गांठ न खोल नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल कबीर तां स्यो प्रीत कर जाको ठाकुर राम पंडित राजे पूक्ती आवे कौने काम कबीर प्रीत स्यो किए अन दुबदा जाए भावे लांबे केस कर आमे कर मडाए वीर जग काज की कोठरी अंध परे तिस माहे हो बलियारी तन को पैसो जो निकस जाहे वीर हो तन जाएगा सको तले हो बहोर नागे पाप होते गए जन के लाख करोर वीर हो तन जाएगा कबले मार्ग लाई कह संगत कर साधकी कह हर के गुण गाए वीर मरता मरता जग मुआ मर पी न जाने कोई ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए वीर मानस जन्म दुलंब है होए न बार बार जो बन फल पाके भुग रहे बहुर न लागे डार वीरा तू ही कबीर तू तेरो नाऊ कबीर राम रतन तब पाइय जो पहले तजह शरीर वीर झंख न झंकिय तुमरो कहो न होए कर्म करीम जो कर रहे मिट न सकै कोय कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय राम कसौटी सोस है जो मर्जी वा होए कबीर उजल पहरे कापरे पान सपारी खाहे एक सार के नाम बिन बाधे जमपुर जाहे कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे छेक हजार, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार। कबीर हाड़ जरे जो ला करी तीस जरे ज्यो कास, इहो जग जरता देख कै पयो कबीर उदास। कबीर गर्ब न कीजिए चाम लपेटे हाड, है बर ऊपर शतर तर ते पुन तरनी गाड। कबीर गर्ब न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल पुए लेटना ऊपर जामे कास। कबीर गर्ब न कीजिए रंक न हसीए कोई, अजो सो नाव समुद्र में क्या जानू क्या होए। कबीर गर्ब न कीजिए देही देख सरंग, आज काल जज तज जाहोंग जो कांचरी पंग। कबीर लूटना है ता लूट ले राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताहोंगे प्राण जाहेंगे शूट। कबीर ऐसा कोई न जन्म्यो अपने कर लावे आग, पांचों नरका जार कै रहे राम ले लाग। को है लड़का बेची लड़की बेचे कोई, सांझा करे कबीर सिंह हर संग बनज करे। कबीर हो चिताब नहीं मत सह सारा जाय, पाछे भोग जो भोग वै तिन को गुड़ लै खाही।

रामदास कल चले ते हर पर पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली न हुटे सतगुर शब्द अथाह अमतारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अजोनी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो अवगत गोचर अपर पर मन गुर शब्द विसायो रामदास का चल कर चरे त जागत उदान पायो जागत दान नमन दान भगत पवतारन अमृत बूंद हर नाम बिस की।

भगवान सतलक सुंदर दशरथ कर मुन बचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव लख गत जाकी श्री रामदास तरण तरन संसार अगम सागर तुला हर नाम पुरुष मुख पाया जग जन मन पगा आई है प्रतीत।

काल का काल निरंजन जच नाम गुर प्रसाद पाईए परमार्थ सत संगत सेती मन खच नाम किया खेल मड मेल तमाशा वाहिगुरु तेरी सब रचना आगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शब्रांज तर ध्यान तै जिस भेद बखाना।

दुख पर हर सुख सहज बिगासी सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूजों कुसुम सुबासी विद्वान गुर आप थपे थिर साचो तख्त गुरु रामदास।

तीस धर्यो गुर हत, तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजुनी

कर्म कर तो दर्स परस पार सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पाय। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध।

नर हो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड्यो पास। ताते गौ हर ज्ञान प्रगटो जियार, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीर्त जो संत चरण मुड़ला।

निवार अपार अनंग पाओ। अगै गहन परंपरांत दहन शीतल सुख दातो असंबोध व्यो पुरख पूर्ण विधातो। नानक याद अंगद अमर सदगुरु शब्द समायो। तन तन गुरु रामदास गुरजन पारस परस मिलायो। जय जय कार जास जग अंदर मंदर पाग जुगत शिव रहता। गुरपुरा पायो बड पागी लिबलागी मेदन पर सहता।

परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो वासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परम्पर पुरख स्यो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही।

पुन भेद बिरंच विचार रहियो, हर जाप ना छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है, संगत श्रिष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण कौ, गुरजोत अर्जन माहे तरी। जग और न जाए महातम मैं अवतार्यो, जग रियान कियो। तिनके दुख कोट दूर।

फिर संकट जोन गर्भ ना आय। काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण, बसै संत जिस हृदय दुख दर दर निवारण। निर्मल भीख अपार तास बिन अवर ना कोई, मान बचन जानियो भयो ते सम सर सोई। तरन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रहो पर, पर मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै, नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सर ढुलै ना अमृत मुख लियो, गुर अर्जुन सर क्षत्रिया परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो। हर वंश जगत जा संचरियो, सो कवन कह श्री गुरमोयो। देवपुरी मैं गयो आ परमेश्वर भायो, हर सिंघासन दियो श्री गुर तै बैठायो। रहस कियो सुर देव तोय जस जय जय जंप है, असुर गए ते भाग पाप तन पीतर कंप है। काटे सो पाप तिन नर हो के गुर रामदास जिन पायो। छत्र सिंघासन पर

जप तप संजम कमावै करम, सील संतोख का रखै धर्म, बंधन तोड़ै होवै मुक्त, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत।

मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाहे सच्चा शब्द मन वसया सतगुर माहे समाहे।

गुरमुख हुक्म मने सके राह हुक्मे ही सुख पाए हुक्मो से वह हुक्म राधे हुक्म समय समाए हुक्म वर्त नियम सुसंजम मन चिंदिया फल पाए सद

अंत होए सब सार कर्म धर्म सो संजम करे अंत लोभ विकार नानक मन मुख जी कमावे सो ठाए न पावे धर गए होए खुआर सबना रागा विच सो भरा पाई जित वसिया मन आए राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए रागे नादे बाहरा

मेलियो ओन जिन तुरमासक भाग लिखाई अंदर तिशना अग है मनमुख भुख न जाए मोह कुटम सब कूड़ है कूड़ रह लपटाई अंधन चिंता चिंता।

से होते उचारी तनाश्री ये पांचों गाई माल रा कौशक संग लाई मारु मात्यांग में बारा प्रबल चंड कौशक यो भारा हो घटे ओ पौरा नद गाये अष्ट माल कौशक संग लाए पुनियायो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोते उठे तान करोल गायन तार मलाब ही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सार सहिरी लै भर जा संग लाई पांचों आर जा सुरमानंद पास कर आई चंद्र बिमंगलन सोहाय सरसवानिया आहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं

सारग सागराय और गौंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर अष्टम एक राग वह गाव हे पांचो संग बरंगन लाभ हे सोर्ष गौंड मलारी धुनी पुन गाव हे आशा गुण गुनी ऊचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरा तार गाज तार केदार।

आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह छेती मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बणिया शब्दूता गा बोरी केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो रनाले अल्ला रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना अपना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे।

क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सा पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिट हो, जिह दियाँ ये बड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रूपे आरू। साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दू तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तो जिन कौसे नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद बाजी। साची लिवे बिन देहे नवाणी, देहे नवाणी लिवे बाज हो क्या करे वे चारिया, तुद वास समर्थ कोई नाई कृपा कर बनवारिया, इस नोर थाओ नाई शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवे बाज हो क्या करे वे चारिया। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिन का मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक हो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जे तू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन देह जिसन होर क्या करे बेचारिया। एक भरम पूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना पाणा पाव ए, कह नानक जह देहे प्यारे सोई जन पाव ए। आप हो संत प्यारियो कथ की करह कहानी कथ केरी कित द्वारे पाई है, तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मने पाए, हुक्म मने हो गुरु केरा गाव हो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी। हे मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, हे माया मोहनी जनेत परम भुलाया, माया ता मोहनी तने कीती जिन ठगौली पाईया, कुरबान कीता तिसे बिट हो जन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा संभाले, हुकटम तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਤਲਾਈਏ, ਐਸਾ ਕਾਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗਮ ਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਹੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਬਖਾਣ, ਏ ਅੱਖ ਹੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਗਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਣ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਟੁੱਟਾ।

सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो हो, होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आँख बखाणी। हरा नित करे रसना कहया कछु ना जानी, चित जन काहिर लया माया बोलन पै रवाणी। कह नानक सतगुरु बाजो हो, होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतान हीरे जित जड़ाऊ, शब्द रतन जित मन लागा हो समाऊ, शब्द सेती मन मिलिया।

सर्व न जो बनवाती मोहे अनाथ की करो समाय खोजत खोजत पै बरागन प्रभु दर्शन को ओम फिर तिस

चढ़ो उठ भगती लगा, उठ भगती लगा यार वे प्रिय हबे सखियां मुंह कहीं ना जेहियां यार वे एक डूम एक चाड़े।